0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एक अनि दिवे राज्य चाडू तित्ती तित्ती कुच्चे
3: काम पे सुमुगे कोरीन कोका बिस्मे किया
4: Kokko men gegea vanne ursalangoa.
5: Kokko men kiyani bismillahirrahmanirrahim.
6: Gegea vanne ru kiyani assalamualaikum.
2: Titti titti kujje. Angar duhuge havir fahijjaheru. Repeat puraswe duhuge havir hatharuge difanerega. Adi adita duhuge havir fahijjaheru. Hamekani divirajje gyadu.
7: दुनिये के हतरु बितु
8: राजे के उतुरा देखुनु
7: खबरा मालूमात
8: हुट्टु मेन्ने थी सव्वीस गडीरु
7: दिवहि राजे के आडु
8: एंगा सतरस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुल कोरी इकारगर फणा रहे रिपीट एरे दियागट तिरी हूं आदि बुद्ध दो गेरे मिंदम बार गट तिरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू कामयाबी फारवेरे कवाम बेनुंता कामयाबी फारवेरिंग गातों इरुशाद होदम बेनुंता व्यापार फुरा कुरम बेनुंता
1: वुनदंकार
3: कम में होने हीर दोए गे हिंदुनु नो गेट फन रहेगा रिपीट होने हीर दोए गे हावीरो हाथरु गेट फन रहेगा आदि आदित्य दोए गे हावीरो हाथरु गेट फन रहेगा
1: इंगा सतर से एक साढ़े सौ एक किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डे नौ मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
3: हम एक नी दिवे ही राज्य के आडू
4: कोम में उमर का
5: कोम में फांतिया का
4: कोम में गिनतिया का दिवे ही राज्य के आडू इंगा सतर से एक साढ़े सौ एक किलोहर्ट्स मीडियम वेव
5: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
2: गाड़ी में दुर कोरी एकार गाड़ी फानर मिनट मी दिवे ही राज्य एक गाड़ू

0: हंहार।
1: मी दिवे राज्य एक अडू के उफेक तुम्हें
2: अंग्यादी उंगन्नादी मुनिफोई फिलवा दिनुमुगा
3: थेदु वेरी कमायको
2: एकु वेरी कमायको
3: एरुवेस मिहारुवेस रायतुन्नायको रायतुन्ना एम मिगातुगा दिवेहराच्चे के आडू
2: इंहा सतरस्ते का साली स्नोई किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होके रे मिंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार हम एकानी दिवे ही राज्य क्या डूं
2: इस्लामी तारखले तेरे कुरेवे दातुर
0: मुकद्दस तंतना इस्लामी ताऊजे बिना कुरुंगा मुहिम मुदाउरे मदा कुफावा समामवी तंतनु के वाहकता
3: कमुंग बाल्कीस के अस्तु रसकं उती कोंग सरहद देक्या तो देनिकन्नं आर्कियोलॉजिस्टुं वरबुडु समाकम
2: रत्त बिना कुरिगोता इल्मं हिवर्दी पिंतावका इल्मं हित्त फुरादिगे
0: कुरी पोशी
4: कोमे हो मदो है के हेंदुनो अग्गडी तेरी हो
0: रिपीट अंगार दुहुगे मेंदुरु एके जहर आदि बुद्ध दुहुगे रे अग्गडी तेरी हो एंगा सतरस्ते के साल इस न्यू किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि 98 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
4: इंतजार को दो

0: आदमी हर घड़ी एगार घड़ी साढ़े सात मिनट मैं दिव्यराज जगह रोल मंगे तुमने चुक चुक थे बेफोन ना एक एक कुरिया दया रोल मंगे मेरे के मेहमान है तुम्हें थे बेफोन हम मंगे उड़ा नवान मेरे राज जगह देखा मशहूर एक फिल्म स्टार के ऑलिंदर नवान गया तो शिया और सर हम जवान में हम सपोर्ट करा एक फिल्म स्टार को तो हो सकने जवान नहीं होंगे तो और सर में सपोर्ट
1: Thank you.
0: Aunda fortama chya film film ki last year se andaman.
1: Ei dehas baavi huka. Ei shia ga I think first one film karne nge.
0: Aha. Ei den vara tafat gata ei den rajya ga me mashur ei director ge me mudaram kurye gose che karne nge. Ei ge fahum mihar kita film kole gose.
1: Mihar ei ge fahum tihem bunim karne nge de film karne nge kula fainna.
0: Ga gan kamul jumla mihar kula film gada thi kya.
1: No haten ashe gamus
0: haten ashe mv mi etano si ayen em kamda film hai koba
1: ehen huria film as wara kamude wara hing hama jeken ne director un hama em go difa hunnani huria film was nimma fado komme scene was sinnani kiyen em hun hama okay mi ti rangale bunima scene cut koffa was den egotan komme character was wara tafatu character kulafaini kiy evatterge character nukulave ha hinda ko हम वारा काम बुदे हो रही हाँ कैरेक्टर तक ऐसे रहा फिल्म में बस
0: मिहार दम दिवे फिल्म तक मिहार बादाफ सुनना न वारा गिना फिल्म होना न कम बादाने हो सकन शे आकुन फिल्म में न बेर फिल्म तब बादाफ होना दें एक हाल फिल्म में बेर ले रोगा हाँ मैं फिल्म का थीम अन्ना यल मैं रोल लिबुन नामे नोनिया लिबिजिया मैं रोल कुल दान एंग तारे फिल्म है बेत
1: हाँ इल्ल गे नीना
0: नीना को कमबैक कर दम बेनु
1: नीना
0: हां माने नीना
1: बरक आज तो वारा वारा वारुगा द कैरेक्टर दोय ही तंगे रे हम कुड़लन ले बेन नामे दो नीना है हम वारा वारुगा द कैरेक्टर देन इल्लेगे लोबिन फिल्म का ताती कुड़फैन कैरेक्टर एवे सम वारा वारा पावरफुल कैरेक्टर एंग एतिवस कुड़लन ले बुन नामे ही तंग आरा देन एकम को ए कोम एम में परफेक्ट मी हुंगे तिबे ए कैरेक्टर कुलन नगा फैक्टर हुंगे गतुगा हम वेमा शिया कुलुन नमका एंग इफेक्टर नेस ए बॉडी लैंग्वेज एम वीएसएस मीहा हुन्ना गोतुम वेस अपीयरेंस एम वीएसएस है
0: मास नीना एक कम में नोज हत पर नगल करे विदान ते नकले वेने
1: ओ मे बेटर है के नो मे पुने काल कैरेक्टर कुळलन लेबे ने
0: ए फिल्म गन लेन म कुळबे ने
1: आ ए रद देने नो हम शिया शिया का बेस्ट नुजु से नुजु का बेस्ट एंड देफा
0: ओके मसे ने एम मे मदेन मिसाल का फिल्म के वादा का मे दे फिल्म कुळमा ड्रामा यस वर तफात वाना फिल्म के ने कोच एम उंदगुली कुळन नो ने ड्रामा गा उळन तो नो ने मने अने सीरीज अच्छी कुल मुक
1: लॉबी के बात ड्रामा एक उस फिल्म कस
0: लॉबी के बात उन दो
1: ऐ ऐ दें लॉबी वामिया का एक ही कनून था लॉबी के बात कुलन जेने हैं वे हुरे कोते आ इंगे एक्टर एक कहीं कम कुछ तमर फू है दें हम उन दो को
0: दें मैं अने एक हाल फिल्म एक मिसाल का मैं हारो कुलम मैं फिल्म एक ही फिल्म तक हो कुलम फ़ेयर एक एक्टर ना के दें मैं स्टार उन तिबे ने दें एको तुम फाह कुल ले वाके खास सीन नंग अच्छे एम में फ़ासे है मैं मैं है का एहम बुने दे फिर काक नगान
1: वारा फ़ासे हम इफ ना जाए किस मसे के कुरं वारा फ़ासे है ताती आए की किस मसे के कुरं दें वारा फ़ासे हा मैं एम मजा ही है असो एम में ना किस वाला मजा इंगे असो मसे के कुरंग एक हम इफ ना जाए के का वाला फसे हवा कोलंग एन वाला वाला स्मार्ट वाला डेडिकेटेड एना मिसाल का शिया तंग कोले हंदान फोटोस एना शिया के डायलॉग हंदान कोले देने हम लाइकवाइज शिया वेस हम वाला दस को गेंग हुन्ने ने हम में का डायलॉग आए की का तो एहवे म इफ ना सुनने फार को जाए हम शिया तंग कोले रिलैक्स कोले वे एशिया नुजे न नय हुरि हाका मे कुरा का मि फार इफ ना ज डिपेंड लाग शियांग हुरे वेन न
0: एम मे मंजर नेगो मगे एम गिने हे कुरम जे होने एम कोंकाल मंजर न गंजे
1: लास्वियस का हुरि गिना सीन तक ये वार टाइम मे हम ए रे फातिस वंदे के सुन रोद महोगे तेरेगा मी हादुवस वंदे का कोम्मे दुआहा को त्री दामवर तीने जहाइरा आने मेकअप गोस्सा आने हिंदुनु आशित जहार नुए जहार ने मी फेस हुन्ना ने आने ए लावा सी ए निनु कारु गए ना लावा ए ती नगम वेस देंग दारका सीरीज कुलुंगेरुगा मी डेड सीन ए मारुआ सीन ए सीन कुलंबेस आने हम वारे टाइम में कि अराउंड 18-19 hours varu ama itta ko emmen tibegen
0: hitan erte paro dem me huttalam ve mikam
1: eten komme do agus
0: emme ma varan avas kamega bah dakalam me ulan
2: varan avaha
0: miga me film star agan nam bunim ena bunim ene abeh gotun hitan anna ichche
1: ichche
0: ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಹಿತಂಗಾರ
1: ತಾಂಕೊಳ ದಿಗುವಿಯಸ್ ಓಕೆ ತಾ ಹಿತಂಗಾರ ಹೆಚ್ಚೆ
0: ಬರ ಅಭಾ ಬಣ ಮಾಣೆ ಕಂ
1: ಆ ವರ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೋ ಬಣೆ ಫಾನ್
0: ಶೀಲಾ
1: ವರ ಮಜಾ ವರ ಲೋವಿ
0: ಅಯೋಪೆ
1: ವರ ಮೊಳು ವರ ಹರದನ
0: ಆನಂದ್
1: ಮಜಾ ಮಿಯೆಂ ಏ
0: ಶಿಫಾ
1: ವರ ಹುನರ ವರ ಹುನರ ವರೆ
0: ಮಣಿಕು
1: ಬೆಸ್ಟ್
0: ಅಜ್ಜ
1: ಮೊಳು
0: ನಿಯಮ
1: ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಬೆಸ್ಟ್
0: ಶರಫ್
1: ಗುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್
0: ಸೀಸನ್
1: ಓಕೆ ಗುಡ್
0: ಜಿಮಿ
1: ಮಜಾ
0: ರವಿ
1: ಮೊಳು
0: ದೊಂಗಯ್ಯ
1: ಫನ್
0: ಶಿಯಾ
1: ಓಕೆ
0: ಬರ ರಂಗ ಜವಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ ಅವ್ಳ ಮೇಲೆ ಉಮೇದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಂಗ ನಿಯಮಕ್ಕ ಹಮ್ಮೆ ಸೈ ಶಿಯಾ ಅವ್ಳ ಮೇಲೆ

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य के अड़ूं
3: इस्लामी तारख के तेरे कुरेवे दातुरू
2: मुकद्दस तंतना इस्लामी ताऊसी बिना कुरुंगा मुहिम दौरेंगा दा कुफावा समामवी तंतनु के वाहकता
4: कमुं बल्कीस के अस्तु रसकं उती कों सरहद देक्यातो देनिकन्नं आर्कियोलॉजिस्टुं वर बुडु समाकम
3: रत्त बिना कुरिगोता इल्मं हिबर्दी पिंतावका इल्मं हित्त फ्रादिगे
2: कुरी पोशी
5: कोमे हो मदो है के हेंदुलो अग्गड़ तेरी हूँ
2: रिपीट अंगार दोगे मेंदुरु एके जहर आदि बुद्ध दोगे रे अग्गड़ तेरी हूँ एंगा सतर्स्ते का साढ़े स्नूइट किलो हर्ट्स मीडियम बेव आदि 98 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
5: इंतजार कर दो